0: निरपौ निर्वैरु अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जाप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार
1: चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार
0: सिया भुख न उतरी जे बन्ना प्रिया पार
1: सह सियाण पा लख होहे ता इक न चलै नाल
0: उसचारा होई है इक कूड़ै टुटै पाल
1: हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल
0: हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाई
1: हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई
0: हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है
1: इक ना हुक्मी बख्शीश इक हुक्मी सदा पवाई है
0: हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई
1: नानक हुक्मे जे बुझ जाता।

0: विद्या विखम विचार
1: गावे को साज करे तन के गावे को जी ले फिर दे
0: गावे को जपे दिसे दूर गावे को वेखे हादरा हदूर
1: कथना कथी ना आवे तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट
0: देंदा दे लेंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाई खाई
1: हुकमी हुकम चलाए राहु ना।

0: नमो मान मान नमो रोग रोग नमस्तं शनाने
1: नमो मंत्रं मंत्रं नमो जंत्रं जंत्रं नमो इष्टे नमो तंत्रं
0: सदा सद्दानं श्रमं परनाशेन रूपे रूपे समस्तल निवासी
1: सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अधो उर्ध्वर धंग अगंग उंग हर्ता
0: परम परम परमेश्वरं ब्रजपालं सदा सर्वदा सदाता दयालं
1: अशेदी अपेदी अनामंग कामंग समस्तो पराजी समस्त स्थामंग तेरा जोर चाचरी
0: शंद जले हैं थले हैं पीता
1: प्रभु है अजू है अदेश है अपेस है पचंग पर्यात छंद
0: वादे वादे नंदी स्वरूपे नम सर्वमान्य समस्त निदाने
1: नमस्तंग निर्थापे नमस्तंग परमाते नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे
0: नमस्तंग काले नमस्तंग पाल नम सर्वदेशे नम सर्वपेशे
1: नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाये
0: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोके नमो सुख सुखे
1: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग
0: नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तारंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग
1: नमो सर्व दृष्टंग नमो सर्व कृष्टंग नमो सर्व रंगे तर्पंगी अनंगे
0: नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे खिजे बीजे समस्तंग प्रसज्जे
1: कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग पनासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धंग निवासी चरपट शांतव प्रसाद
0: अमृत कर्मी अमृत धर्मी खल जोगे चल भोगे
1: अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग
0: दाता सर्वज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने
1: सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग पुक्ता सर्वंग जुक्ता
0: सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले
1: अरवाल शंतवै प्रसाद
0: आदरूपनाद मूर्जोन पुरख पार
1: सर्वमान त्रिमान देव पेव आदो दार
0: सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल
1: जंतर तत्र ब्रह्माजी अवधूत रूप रसाल
0: नाना जात जाकर रूप रंग नरेख
1: आद पुरख दार मूर्त जोन आद
0: सेत जाग रूप रेख न राग
1: जंतर तत्र दिशा।

0: चंड मित गत
1: आलस्य कर्म दिस धर्म सर्वापरण अंडांडन बाड
0: जाचरी शांत वै प्रसाद
1: गोबिंदे मकंदे उदारी अपारी
0: हरियम करियम ने नामे अकामे पचंग परियात
1: चत चक्र करता चत चक्र हरता चत चक्र दानी चत चक्र जानी
0: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
1: चत चक्र पास चत चक्र वास चत चक्र माने चत चक्र दाने
0: जाचरी शांत
1: ना सत्र न मित्र न परम न पितर
0: ना कर्मंग ना काये अजन्मंग अजाये
1: चत्र न मत्र परिह पवित्र
0: वर्ती से अदिसे अदृसे अकृसे भगवती शांत है प्रसाद करते
1: आशीष देस के आपिच पिस के आगंज कर्म के आपंज परम
0: के आपिच लोके के आदित सोके के अवधूत वरने के पूत
1: करने राज ब्रह्मा के धर्म तो जा के आशुक वर्ण सर्वा परण
0: के जगतं कीर्ति है के शतरंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे
1: याद देव के आप भी वंग चित्रण भी न के का दीन
0: के रोजी रजाय के रही मेरे हाय के पाक बैब है के गैवल गैब है
1: क्या बोलग ना के शान शाय कारण कुनंद गुरु जी दहंद
0: है के राज करहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली
1: के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण
0: है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे
1: के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाहु
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाले
1: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोखे
1: के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश
0: है के सर्वत्र मानिए सदैव अंग प्रधानी है के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए
1: के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
0: है के सर्वंग कली में के परमंग सही में के आकल अलामे के साहिब कलामे
1: वजू तुमा मूल रुजु में सो सलाम है सलिकुत मदाम है
0: गनी मल शिखस्ते गरीब अल परस्ते बलंदल मकाने जमीन अल जमाने
1: अमीर तुमा रुजु निदान हरिपुल जिमर जाय के यकीन
0: है अनेक अल तरंग है अपेद है अपंग है अजीज अल निवास है गनी मल खराज है
1: स्वरूप त्रिमुक्त भूत प्रभक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है
0: सदैव अंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्व साज
1: है सलाम है सदैव काम निर्वास रूप गाद अनूप है
0: गाद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी
1: त्रिपंगी त्रिपाद गंजे गादे सुभंग सर्वभाग्य सर्वानुरागी
0: त्रिपुक्त स्वरूप है अशिज है अशूत है के नरकन पर नास है पृथ्वी अल पर वास है
1: निरुक्त ब्रह्म सदा भंग सदा भोग स्वरूप प्रजोक्त अनूप है
0: निरुक्त सदा है विपुक्त

0: शान्त्वा प्रसाद
1: सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता
0: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणिं सर्वं त्राणिं
1: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता
0: रसावल शान्त्वा प्रसाद
1: नमो नरकनाशि सदैवं प्रकाशे नंगं स्वरूपे पंगं बपुते
0: परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध
1: नंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुप

0: कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमसा।
1: जवन काल जोगी सब कियो वेद रास ब्रह्मा सो थियो।
0: जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताई हमारा।
1: जवन काल सब जगत बनायो देव दयात जशन पजायो।
0: आद अंते के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा।
1: नमस्कार तुसी ही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी।
0: शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो।
1: कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत।
0: जीती ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।
1: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी।
0: एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने।
1: जाबूद करक करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा।
0: जबा करक कर तुम कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ।
1: जेते बंदर शिष्ट सब तार।

पंच जना स्यों संग ना छुटकियो आदक अहं बुद्ध बादी पाठ पढ़ियो अरबीद विचारियो निबल भयंगम साधी पंच जना स्यों संग

हर कीरत साध संगत है सिर करमन कै करमा कहु नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे।

0: विनाश ब्रह्मज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्मज्ञानी पारपकार उमाह ब्रह्मज्ञानी कै नाही तंदा ब्रह्मज्ञानी लहता वित बंदा ब्रह्मज्ञानी के होई सो भला ब्रह्मज्ञानी सुफल फला ब्रह्मज्ञानी संग सकल उदार नानक ब्रह्मज्ञानी जपे संसार ब्रह्मज्ञानी कै के रंग ब्रह्मज्ञानी कै बसे प्रभसंग ब्रह्मज्ञानी के नाम आधार ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार ब्रह्मज्ञानी सदा सजगत ब्रह्मज्ञानी अभुत्यागत ब्रह्मज्ञानी के पन परमानंद ब्रह्मज्ञानी का सदानंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नान ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्मज्ञानी संहिता ब्रह्मज्ञानी कै हुई अचिंता ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंता ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्मज्ञानी का वर प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दस पट पागी पाइया ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइया ब्रह्मज्ञानी को जय महेश नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्मज्ञानी कै सकल मन माहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा देसा ब्रह्मज्ञानी का कथे न जाय दाखर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्मज्ञानी कीमित कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की कत ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्मज्ञानी सत जीव है नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुक्त जगत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार ब्रह्मज्ञानी आदरंकार ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तरी
1: सर्व मैं भिखे भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक ओ अपरस सगुण निस्तारे अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श परत रूप न भिखे नेत्र साधु संघेत करुणा सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद भिखे पर हरे मन की वासना मन ते टरै इंद्री जित पंच जोग ते रहत नानक कोड़ मधे को ऐसा प्रस वैष्णो सो सो प्रसो वैष्णो सो सो प्रसो प्रसन्न विष्णु कुमार ते भिन्न कर्म कर तो ने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग राचै मन तन अंदर सिमरन गोपाल सब ऊपर होत कृपाल आप दृढ़ नाम जपावै नानक हो वैष्णो प्रमुख पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिनसे सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मुलख हुआ तिस भगवती की मत तुम हुआ भगवंत की टल करण तनीत मन तन रपे विष्णु परीत हर के चरण हिरदे वसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जुमन प्रबोध राम नाम आत्म सोध राम नाम सारा सपीवै उस पंडित के देख जग जीवै हर की कथा हिरदे वसावै सो पंडित फुर जो न आवै वेद प्राण सिमरत बुझे मूल सुखम जाने अस्थूल चौवरणा को देव देस नानक उस पंडित को सदा देस बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरणा में जपे को नाम जो जो जपै तिसी ज्ञात होए सत्संग पावे जन को है कार्य कृपान तरूर धारे पास प्रेत मुकत पात्र को तारे सर्व रूप का उकद नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम काहो जुगत कित न पाई धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया धुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस न द्रि आया दास सुंदर भाई तिन पाया सदा निक निक हर जान सो दास दृगे प्रवान अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को साफ सो जी पर सगल संगात मुदास ऐसी युगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा तुम्हें तावै जीवन मुख सो कहावै तैसा हर तैसा सोख सदान तैना ही व्योग तैसा सरण तैसी माटी तैसा अमृत तैसी भी खाटी तैसा मान तैसा मान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताय साहि जुगत है नानको पुर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जिद जिद का राखे तैसा तिन्ना आपे करण करावन जोग प्रभावे सोए फुन होग पसर आवन त्रंग लखन जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल सलोक उस्तद करै अनेक जन तन पारावार नानक रचना प्रावृचि बहुविधि अनुप्रकार स्पदे कई कोड़ पुजारी कई कोड़ आचार विहारी कई कोड़ पै तीर्थवासी कई कोड़ बन भरमे उदासी कई कोड़ वेद के स्रोत है कई कोड़ तपीसर होत है कई कोड़ आत्म ध्यान धार है कई कोड़ कव का विचार है कई कोड़ नवतन नाम ध्यावै नानक करते कंत न पावै कई कोड़ भय मानी कई कोड़ अंध ज्ञानी कई कोड़ कृपण कठोर है कई कोड़ अफग आत्म निकोर है कई कोड़ पर द्रव कुहिर है कई कोड़ पर दुखना करे कई कोड़ माया शरमाए कई कोड़ परदेश फरमाए जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोड़ से जति योगी कई कोड़ राज रस भोगी कई कोड़ पंख सरोप पाए कई कोड़ पाथर बिरखण विजाए कई कोड़ पौन पानी बैसंतर कई कोड़ दे सो मंडल कई कोड़ सस्र सुरन खेतर कई कोई दो देव दानविंदर सिर छात्र सगल समग्री अपने सो तार है नानक जिस जिस भाव है तिस ते निस्तार है कई कोड़ राजस्थान सातक कई कोड़ वेद प्राण समर तर सासत कई कोड़ कीरतन समुंद कई कोड़ नाना प्रकाश जंत है कई कोड़ के अचर जीव है कई कोड़ गिरी मेर सुरन थीव है कई कोड़ जक नर पिसाच कई कोड़ पुत्र शुकर मेर गाच है सब ते नेरा सबू ते दूर नानक अब अल्प त्रय भरपूर है कई कोड़ पाताल के वासे कई कोड़ नर सुर निवास है कई कोड़ जन्म जीव है मरा कई कोड़ बोझो नहीं फिरा कई कोड़ बैठते खाए कई कोड़ काल थक पाए कई कोड़ गया तनवंत कई कोड़ माया मैं चिंत जह जय भाणा तह तह राखे नानक सब की प्रभु गयात कई कोड़ भय बैरागी राम नाम संग तन लवलागी कई कोड़ प्रभु को खोजंत आत्म पार नहंत कई कोड़ दर्शन प्रभु प्यास तिनको मिले प्रभु विनास कई कोड़ मांगे सत्संग पार पुन तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोड़ खाणी रखंड कई कोड़ आकाश ब्रह्मंड कई कोड़ होए अवतारे कई जुगत किनो विस्तार कई बार पसर पासार सदा सदा कई कंकार कई कोड़ गिने वो भात प्रभत ब्रह्म समात ता कांत न जाने कोए आपे आप नानक प्रभु सोए कई कोड़ पार ब्रह्म के दास तिन होत आत्म प्रगास कई कोड़ तात के बेत सदा न हरे को नेत्र कई कोड़ नाम रस पीवै अमर भय सदी जीवै कई कोड़ नाम गुण गावै आत्म रस सह समावे अपने जन को सा सा सुमारै नानक परमेश्वर की प्यारे सलोक करण कारण प्रभिक है दूसर नाई कोय नानक तिस बलहारण जल थल मयल सोयाष्टपद करण करावन करण जोग जो तिस पावै सोई होग खिन में थाप तापन हार अंत नहीं किस पारा वार हुक्मे तार द्रहावै हुक्मे उपज हुकम समावै हुक्मे उच निज व्यवहार कमण करम प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब मेरे समाए प्रभावे मन कद पावै प्रभावे ता पात्र त्रावै प्रभावे विश्वास राखै प्रभावे ता हर गुण पाखै प्रभावे ता पद दुहारे आप करे अपन विचार दुहा श्रेया का आप स्वामी खेलै विकसे अंतर जाम जो भावे सो कार करावै नानक दृष्टि अरुण आवै कहो मनुख ते क्या होय आवै जो तिस भावै सोई करावै इसके हाथ हुए ता सब कुछ लै जो तिस भावै सोई करे अणजाण तबिकै मेरा चै जे जानते अपने बचै भरमे बुला दिस्तावै निमुख माचार कुण।

कमसुख हर करंग हस कहु नंद जन बिहारी कहु उपकाश प्यार कहु बेता ब्रह्म विचार नानक्या मिलावन हर कहु नृत्य कर पात कहु सोय रह दिन रात कहु मां क्रोध विकराल कहु सर्व क्यों द्रवाल

सच कह कबू होय पंडित कृपख्यान कबू मोहन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सि साधमो ज्ञान कबू कीड़ हस तंग हुए जियान कजुण परमे परमैया नाना रूप जो स्वंग दिखावे जो प्रभावे तेवन चावे जो तिस भावे सोई होए नानक दूजा अवरण कोय कबू सा संगत पावे उसा स्थान ते बोलन आवे अंतर होए ज्ञान प्रगास सुसदान करने विनाश मन तन नाम हृदय करांगे सदा वसे पार मुंगे सांगे जो जल में जलिया खटाना त्यो ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सतगुरबान सलोक सुखी बसे मसकीनी आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गलेष्ठ पद जिसका अंतराज मान सो नरक पातियो सुवान जो जाने मैं जो बणवंत सो तविष्टा का जान आपस को करवंत कहावे जन्म रे भोजन परमावे तन भू काजु करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिस के हृदय गरीबी वसावे नानकिया मुक्त अगे सुख पावे धनवंत आवे कर करवावे तरन स्वाम कर संग न जावे बोल सक्रमण को उपर करे आस पल भीतरता का विनाश सब ते आप जने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किस न बदे अहंकारी धर्म राय तिज करे खुआरी गुर बल सा जा का मिटे अपमान सो जानन दरगे प्रवान कूड़ कर्म करे हो तारे शरम पावे सगले बिर तारे अणुक बसया करे अहंकार नरक सुरु फिर फिरे अवतार अणुक जतन करे आत्मनि द्रवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकन आवे सर्व गिरिंजा का मन होए तबले कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछोए तब उसको सुकुनाई कोए जब ये जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जुण में फिरता जब थारे को बारी मीत तब लगने चलना से जब लग मोह मोह संगमाए तब लग तन दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक को छूटे सहस कटेला कोटता वै तृप्त नावै माया पाचे पावे भोग क्या की करे न तृप्ता वे कब खमरे बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ वृथे सब खाजै नाम रंग सर्व सुखाए वडभागी किसे प्राप्त होए करण करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावण करने हार इसके आदका विचार जैसे दृश के दसाए आपे आप आप सोए जो किश किन सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझै देखे करे विवेक आपे कपे अनेक मरण बिन से अवन जाए नानक सब ही रह समाए सो सेवक आप उपदेश समझे आप आपे रचा सबके साथ आप किनु अपन विस्तार सब कै सुज कव करने हार उसते भिन्न कौ कुछ होए थान तन तेरे का सोए अपने चल तब करने हार कौते करे रंगे अपार मन में अपन अपने माए नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किन वखियान सच सच सत सब कीना कोण मदे किन बिरड़ चीना भला भला भला दर रूप असुंदर अपार लो निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरण मुखे आणी पुअत्र पुअत्र पुअत्र पुणीत नाम जप नानक मन प्रीत सलोक संत शरण जो जन पर सो जन उदरनार संत की निंदा नानक बहर बहर अवतार अष्टपदी संत के दुखन यार जा कटे संत के दुखन जम तने छूटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के है दुखन मत होए मलीन संत के दुखन

नित्याई हर पुरुष निरंजनारहा जय हर सिमरन पया ते बात गत कीने वड भागी।

हर नाम की हमको सतगुरु कार सुनी दई, हर नाम की हमको सतगुरु कार सुनी दई, ओ सतगुरु कार सुनी।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

रांगन रांगों सीवन सीवो राम नाम बिन करी न जीवो। भगत करो हर के गुण गावो आठ पहर अपना खसम ते आवो

पंजवा दीन दर्द निवार ठाकुर राखे जन की आप तारन तारन हर निध सुख न सके व्याप। दीन दर्द निवार ठाकुर राखे जन की आप तारन तारन हर निध दुख न सके व्याप। साधु संग भजो गोपाल आन संजम किस ना सुझे ये दतन काट कल काल रहो आद अंत दयाल पूर्ण तिस बना नहीं कोई जन मरन मार हप जप शमर स्वामी सोए वेद शास्त्र वेद शमर कथे शास्त्र भगत करे विचार मुक्त पाइय साध संग दिन सजाई अनुहार हर नकाम आधार जंका रास पूंजी एक तान मान देवान साचा नानक प्रभ ठीक शरण कमल आधार जनका रास पूंजी एक तान मान देवान साचा नानक प्रभ ठीक। वाहिगुरु सोठ हमारा पंजवा गुर का सावर खवारे चौंकी चौकर हमारे राम नाम लागा जाम लाका पाका सब कुछ मेरे सदाता बंधन काट करे मन में पूर्ण फल उदास रहा हुआ नानक सावरना सी ताकि सेवन जासी करे तेरे दासा जप पूर्ण हुई आसा बिलावल महला पंजवा ताते वावन लगे पाप ब्रह्म सरनाई चौगर हमारे राम कार मुख लगे न पाए सतगुर पूरा भेटा जन बंत बनाई राम नाम उखा जी अकाले बनाए राख तैं रखा साधार बताई कहो नानक कृपा बे पाए सहाई जय साधु गोवन भजन कीर्तन नानक नीर ना हो नाथाइए दूर। मन में चित वो चित बने उदम करो उठ नीत हर कीर्तन का हर हर देहो नानक के नीत। छोला राग गुड़ दीप की महाराज प्रसाद या कर के साखिए कर से कहे विचारो चित कर गावो सोहला से सृजन हारो तुम गावो मेरे दुर पाकर सोहला हो वारी जित छोले सदा शुक्र हो जितना जीव रे समाधि देखना देवन हार तेरे दाने के सुना पवे तेरे साथे कमल समार सामत साह लिखया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन असीस लिया जो होवे सहर सुमेल घर घर एहो पहुँचा सदरे नित पवन सदन हारा सूर्य नानक से दे अवन रागा सा महला पहला छे कर छे गुर छे देश गुर गुर एको देश अनेक बाबा जय कर कर से कीर्त होए सो का राख बड़ाए तेर हाओ दिस वे चस्या घड़िया पहरा तिथि बारी माँ हुआ सूरज एको रोता अनेक नानक करते पे के वासन आश्री महला पहला गगन में थाल राव चांद दीप कवन तारका मंडल जान कुमती